0: فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए

0: 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. The swearing-in ceremony will be held at the Veterinary College playground in Khanapara and is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. West Bengal Chief Minister Suendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the 5 ministers who took the oath of office and secrecy along with the Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Newly elected MLAs are also expected to attend the meetings. A guard of honour will be presented to Chief Minister Suvendu Adhikari at around 11 a.m. today, following which the cabinet meeting will take place. India now ranks 3rd globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments such as solar cells, wafers and polysilicon. According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts.

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: শেষ হলো ভজন। আজকে শিল্পী ছিলেন জয়দীপ কুণ্ডু, আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা। একটু পরেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংবাদ।
1: সম্প্রতি বার্তা শ্রুয়ন্তাম প্রবাচক ডক্টর গণেশ হেগড়ে। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तर नवसहस्र कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डलदण्डाधिकारिभिः पुलिस

0: इति आरक्षि अधीक्षकैः विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमन्त्रीपदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतनसर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपानेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबन्धननेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिन्नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमन्त बिश्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों

भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में

0: नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
1: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो

0: वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने PM के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोस्तों, आपकी दोस्त सविता पोद्दार सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रसधारा में। और रसधारा में आज हम वो कौन सी खास बातें करने वाले हैं और आज किस थीम पर बातें करेंगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे एक खूबसूरत नगमा।

वादा करो, जी हाँ वादा करो कि आप मेरे साथ पूरा 10 बजे तक रहने वाले हो कार्यक्रम रस धारा में, क्योंकि आज कुछ खास है। जी हाँ, आज मनाया जाता है टेक्नोलॉजिकल डे, यानी तकनीकी दिवस। 11 मई को भारत में मनाया जाता है और इतिहास में यह तारीख इतनी अहम है क्योंकि इसी दिन भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। दोस्तों, 11 मई हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की तकनीकी क्रांति के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना आज हमारी जो थीम हो वो हो क्या कि प्रौद्योगिकी और राष्ट्र का विकास। जी हाँ, प्रौद्योगिकी हमारे राष्ट्र के विकास में कितनी महत्वपूर्ण है, हमें किस दिशा की ओर ले जा रही है और उसने कहाँ से कहाँ तक हमारे राष्ट्र को विकसित राज्य देशों के बीच में खड़ा कर दिया है, आज कुछ हम ऐसी ही बातें करने वाले हैं कार्यक्रम रसधारा में और सुनेंगे गाने भी। जी हाँ, तो सुनते हैं गीत एक प्यारा सा और उसके बाद हम बात करने वाले हैं।

जी हाँ, हम यदि जरा भी सोचें तो वो एक दौर था जब हम एक ऐसे युग में थे जहाँ आग भी जलाना हमको नहीं आता था, आयरन एज में। जी हाँ बिल्कुल, हम एक ऐसे वक्त पर थे जहाँ हमें अपने लिए अन्न उगाना भी नहीं आता था। हम नहीं जानते थे कि हम कपड़े कैसे बुने, हम कैसे एक सभ्य समाज में रहें, हम अपने एक कैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ें, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन ने तरक्की की और तरक्की करते करते आज हम तकनीक और विज्ञान के युग में आ पहुँचे हैं। और इस युग में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनके बारे में हमने कभी शायद कल्पना भी नहीं की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहते हैं ना कि बौद्धिक विकास होता चला गया और हमारी तकनीक में भी हमारे विज्ञान ने भी विकास करते हुए कमाल कर दिया। ऐसे ही सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक अब तो हम ये कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में ये एक अभिन्न अंग हो चुका है तकनीक। यानी हमारा कोई भी काम बड़ी ही आसानी से, तेजी के साथ और सुविधाजनक बना देता है, चाहे वो संचार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो या बैंकिंग का। इसने हमारे जीवन में बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और वो परिवर्तन

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और बात हम कर रहे हैं तकनीकी युग की। जी हाँ, जिससे जो विकसित हमारे राष्ट्र के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की तकनीक और विज्ञान किसी भी देश को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा देता है। और आज है तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस, और आज हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के विकास की, इसने कहां से कहां तक ऊंचाइयों तक देश को पहुंचाया। और इसमें यदि हम बात करें संचार और कनेक्टिविटी की, तो इसमें स्मार्टफोन, जी हाँ, आप जो स्मार्टफोन लेकर के बैठे हैं, आपके लिए वो एक पूरी की पूरी दुनिया है। और कई बार ऐसा अक्सर होता है कि यदि आपका फ़ोन घर में छूट गया या फिर कहीं ऑफिस में रह गया, ऐसे में आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आपकी दुनिया ही कहीं आपसे थोड़ी देर के लिए जुदा हो गई है। जी हाँ, स्मार्टफोन ने और इंटरनेट ने दूर बैठे हर परिवार के सदस्य को, दोस्त को, और आपके काम को बहुत करीब ला दिया है। तो ये है तकनीक का कमाल। इसके अलावा सोशल मीडिया, जी जब आप एक बार प्रिंट मीडिया का इंतज़ार करते थे घर के ड्राइंग रूम में बैठकर बालकनी में, या सुबह सवेरे चाय की चुस्कियां लेते हुए, उस वक्त आपको ज़रूरत होती थी अखबार की। यदि बारिश हो गई तो शायद अखबार आपके दरवाजे तक ना पहुंचे, मगर अब भला क्या फ़र्क पड़ता है, फिलहाल तो आपके हाथ में मोबाइल है ना, तो सारी दुनिया से आप खबर ले सकते हैं और सारी दुनिया को खबर दे सकते हैं तकनीक के माध्यम से। ऐसी ही बातें और करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो सुनेंगे त्रिशूल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

जी हाँ दोस्तों, गीत रोमांटिक सुनते सुनते हम बात कर रहे हैं तकनीक की, प्रौद्योगिकी विकास की, और उसके साथ में हमारे राष्ट्र का विकास कैसे हो रहा है, बातें आज यही हो रही हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा यदि हम प्रौद्योगिकी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम देखें तो वो है कि ऑनलाइन लर्निंग। जी हाँ, आज हम पहले, आज से शायद दशक पहले तक इतना सोच नहीं पाते थे कि ऑनलाइन लर्निंग भी हो जाएगी या फिर ऑनलाइन वर्क भी हम कर सकेंगे, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे कोरोना महामारी के दौरान ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि हमने ये सीख लिया कि ऑनलाइन लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर कैसे काम किया जा सकता है, और ये कमाल तो तकनीक का ही था। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इतनी इजी लाइफ हमारी उस महामारी के दौरान हुई, उसमें कमाल तकनीक का था। लैपटॉप या स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाया गया, ट्यूशंस लिए गए, क्लासेस ली गई, योगा की क्लास हो, डांस की क्लास हो, कथक क्लास हो, या फिर आर्ट की क्लास हो, इवन बहुत सारे अभिनय की क्लास हो, या ऑफिस में काम करना, सर्च इंजन, किसी भी विषय की तुरंत जानकारी हमारे लिए गूगल महाराज है ना। घर बैठे हम बड़ी ही आसानी से, एक बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, जाने की समस्या हो, लेकिन गूगल है जो हमारी हर परेशानी का हल है। तो दोस्तों, ये जो तकनीक है वो उसने हमारे जीवन को कितना सहज और सरल किया, ये हमने देखा। किसमें देखा? हमने तकनीक के माध्यम से ही देखा। चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत, और उसके बाद फिर हम और भी बातें करने वाले हैं।

जी हाँ, फिल्म राज का ये गीत आपने सुना अभिजीत की आवाज़ में। अच्छा, आपको बहुत साल पहले से एक डर तो हर समय सताता होगा जब आप बाजार जाते होंगे या जाती होंगी, ऑफ कोर्स, कि कहीं मेरी पिक पॉकेटिंग ना हो जाए, कहीं मेरे पर्स से पैसे कोई ना चुरा ले, कहीं मैं सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे सोते समय में कोई मेरा पर्स ना ले जाए। ऐसी चिंता हर वक्त सताती होगी, लेकिन फिलहाल ये चिंता से मुक्ति दिला दी हमारे डिजिटल पेमेंट ने। ऑफ कोर्स, अभी आप अपने खाली हाथ चले जाइए, आपके पास मोबाइल है तो बस डिजिटल पेमेंट हो ही जाएगा, ऑनलाइन आप पेमेंट कर ही देंगे, तो अब आपको कैश लेकर के चलने की चिंता बिल्कुल नहीं सताती होगी। एक तो लेकर के जाना, फिर उसको सुरक्षित रखना, ये दो बड़ी चिंताएं थीं। फिलहाल आज तकनीकी विकास ने प्रौद्योगिक

विकास ने आपके लिए ये काम बड़ा ही आसान कर दिया है। आप भीम या अन्य UPI भारत ऐप्स का उपयोग करके या घर बैठे बहुत सारे डिजिटल पेमेंट के जो सरकारी हमारे ऐप्स हैं उन पर बैठे भुगतान कर सकते हैं और पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक जाए बिना मोबाइल बैंकिंग ऐप से अकाउंट मैनेज करना भी बड़ा ही आसान हो गया है और दुकानदार भी आपके सामने लेकर के स्कैन कोड लेकर बैठे होते हैं कि आप आराम से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़माना है नया और इस नए ज़माने में हमको परेशान तो एकदम नहीं होना,

दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रेम नगर का ये गीत आपने सुना और बात हम कर रहे हैं प्रौद्योगिकी विकास की। कोरोना के समय में ऐसा अक्सर हुआ कि हमारी कोई बीमारी ने हमें यदि परेशान किया, और कोरोना महामारी ने तो सभी को परेशान किया, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी

असर पड़ा। और लेकिन ये हमारा तकनीकी और विज्ञान का योग था कि जिसने टेली मेडिसिन जैसी हमें सुविधाएं मुहैया कराई। जी हाँ, डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेना संभव हो गया। और आज के युग में जब लोगों के पास समय कम है और काम ज़्यादा, तो आप घर बैठे आराम से वीडियो कॉलिंग करके परामर्श कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। ये कमाल है तकनीक का। इसके अलावा आप अपने हृदय की गति वॉच कर सकते हैं स्मार्ट वॉच से, फिटनेस बैंड से। ये भी आपके रक्तचाप पर, आपके दैनिक क्रिया कार्यों पर नज़र बनाए रखती है। तो एक तरह से कहते हैं ना, जो हमारी माँ है ना, जो हमारी देखभाल करती है और हमारा हर समय ख्याल रखती है, तो कुछ तकनीकी ऐसी सुविधाएं हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे इंजीनियरों ने मुहैया करवा दिए हैं कि हम आराम से अपना ख्याल भी यदि अकेले रहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि माँ का कोई विकल्प नहीं होता। इसके अलावा घरेलू उपकरणों में भी तो इजाफा हुआ है ना। बिल्कुल, किचन में आप देखिए कितनी सारी ढेर सारे उपकरण हैं जो आपके काम को इतना आसान कर देते हैं। भला कहाँ हम सिल बटना लेकर के बैठते हैं चटनी बनाने या मसाला बनाने। कोई भी हमको लजीज व्यंजन बनाना है तो बस लेकर बैठ गए ना, हमारे पास मिक्सी ग्राइंडर है और जो पलक झपकते ही आपके सामान को, आपके मसाले को पीस देता है। और इंडक्शन चूल्हा, स्मार्ट फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो खाना पकाने और हमारे खाने को सुरक्षित रखने में भी कामयाब हैं। स्मार्ट होम के कुछ अप्लाइंसेज हैं, जी हाँ उपकरण हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रोबोट वैक्यूम, रिमोट से चलने वाला एसी, जो हमारी ऊर्जा में तो बचत करते ही हैं, हमारी खुद की शरीर की ऊर्जा को भी बचाते हैं और साथ में काम भी हमारा आसान करते हैं। कितनी सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं। परिवहन में कहीं बाहर जाने के लिए नेविगेशन है, मैप्स का सहारा लेकर के हम आसानी से बिना किसी से पूछे अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और मंजिल की बात हुई है तो धीरे धीरे मंजिल मेरी भी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है आपसे विदा लेने की। तो फिलहाल तो यही कहूँगी कि जी हाँ, 10 बजे नॉन स्टॉप गपशप FM रेनबो पर 107 पर मिलना मुझसे ना भूलें। और यहाँ आपसे विदा लूँगी फिल्म लिबास का ये गीत सुनवाते लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और तकनीकी युग में सुविधाओं का उपयोग तो करते रहिए लेकिन एक लिमिट तक। जी हाँ, कहीं हमें हानि ना पहुँचाएँ इसका भी तो ख्याल रखना है। फिलहाल दीजिए इजाज़त।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

मीडिया में अब 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल है। सामिन कराम इस वक्त हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:15:44 हो रहे हैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ की दीवानी कहाँ जाती, तुम्हारी अंजुमन से उठ की दीवानी कहाँ जाती, जो वाबस्ता हुआ तुमसे वो अफसाने कहाँ जाती। जी हाँ सामिन कराम, हमारा दिल भी आपकी मोहब्बत के कई अफसानों से वाबस्ता है। यही वजह है कि रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप तमामी सामिन को आफ्ताब आलम का पुरखलुस आदाब। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ताइए दोस्तों, आईने की इसी सदाकत के साथ रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की इब्तदा करते हैं। सामिन कराम, आज मादरे वतन के बेहतरीन सपूत मारूफ मुजाहिद आजादी मोहम्मद आसिफ अली का यौम वलादत है। इस मौके पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उनकी वलादत 11 मई 1888 को दिल्ली के एक मुअज्जज़ ख़ानदान में हुई। आसिफ अली की कदावर और बड़े दर्जे के सियासत ना होने के साथ साथ बेहतरीन वकील और सिफारतकार भी थी। उन्होंने वतन अजीज़ की आज़ादी के ताल्लुक से कई बेहतरीन सरगर्मियाँ पेश की थीं। उन्होंने 1920 में अदम ताउन तहरीक में बेहतरीन शराकत दारी की थी। 1942 में भारत छोड़ो तहरीक में भी उनका नुमाया किरदार शामिल रहा, जिसके पादेश में उन्हें जवाहरलाल नेहरू व दिगर रहनुमाओं के साथ अहमदनगर किला में कैद किया गया था। असेंबली बम धमाके मामले में वो भगत सिंह के वकील भी थे। मादरे वतन की आज़ादी के बाद वो मुल्क के पहले अमरीकी सफीर बने, बाद में स्विट्जरलैंड के भी सफीर बनाए गए। 1948 से 1952 तक बतौर गवर्नर उन्होंने उड़ीसा की बेहतरीन खदमात अंजाम दी। उनकी अहलिया अरुणा आसफ अली भी एक मुअज्जज़ मुजाहिद आज़ादी थी, जिन्होंने वतन अजीज की आज़ादी के ताल्लुक से नुमाया किरदार अदा किया था। सामिन कराम, वतन अजीज के इस बेहतरीन सपूत मोहम्मद आसफ अली ने 2 अप्रैल 1953 को स्विट्जरलैंड में बतौर सफीर खिदमत अंजाम देते हुए वफात पाई, लेकिन अपनी बहादुरी कानूनी महारत और जिद्दोजहद आज़ादी के वतन के हवाले से ये हमारे दिलों में हमेशा हमेश के लिए जिंदा वो जावेद रहेंगे।

खुशामदी थी। अपने ताल्लुक से वो कहते हैं, अफसाना मुझे लिखता है। उन्होंने कई मशहूर और मकबूल अफसाने रकम करके उर्दू अदब को खूब मालामाल किया है। उनके मशहूर अफसानों में टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल बू, काली शरवार और नए कानून वगैरह हैं। अलावा अजी उनके 20 से शायद अफसानी मसवे, कई नावल, मजामिन, खाके शाये हुए हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी रकम की हैं। सामिन कराम, उर्दू अदब के इस बाकमाल फनकार ने 18 जनवरी 1955 को इस तारे फानी को खैरबाद कहा था। मोंटू आज भी नौजवान नस्ल के लिए बगावत और हकीकत पसंदी की अलामत बने हुए हैं।

सामिन कराम, अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गाइड के नगमे से महसूस हो रहे थे। शायरी थी, शैलेंदगी और मौसीकार थे HD परमन। सामिन कराम, आप अपने दोस्त आफ्ताब आलम के साथ रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन समाप्त फरमा रहे हैं।

राष्ट्रपति हिंद ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की इब्तदा 8 अप्रैल 2015 को की थी, जिसका मकसद गैर कॉरपोरेट, गैर फार्म और माइक्रो वो इंटरप्राइजेस को कर्जा फराहम करके उन्हें माशी तरक्की देना और उनके जरिया लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना था। सामने इस स्कीम में खवातीन को खसूसी तरजीह दी जाती है और ये स्कीम खवातीन कारोबारियों को बाख्तियार बनाने में नुमाया रोल अदा करती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मकासद के ताल्लुक से अगर बातें की जाए तो ये हैं, छोटे दर्जे के ताजिरों के कारोबार को शुरू करने, इसे आगे बढ़ाने या इसे जिद्दत से हमकनार करने के लिए कर्जे का फराहम करना, ख्वातीन नौजवानों, देही इलाकों और कमज़ोर तबक़ात को माली शमूलियत देना और मुलाजमतों की तख्लीक और माली तरक्की देना वगैरह। दोस्तों, मुद्रा स्कीम के तहत कर्जा कारोबार की नशोनुमा के मराहिल के मुताबिक दिया जाता है। ये मराहिल शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस हैं। शिशु मरहले के तहत नया कारोबार शुरू करने वालों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह किशोर मरहला यानी जारी कारोबार की तौसी के लिए 50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की रकम बतौर कर्जा फराहम की जाती है। मुस्तकम कारोबार तरुण मरहले में शुमार किया जाता है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा स्कीम के तहत 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक का कर्जा दिया जाता है और इसी तरह मुद्रा योजना के तहत तरुण प्लस यानी जो कारोबार तरुण जो कारोबारी जो ताजिर तरुण लोन की रकम कामयाबी से वापस दे चुके हैं उन्हें 10,00,000 से 20,00,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है ताकि वो अपनी तिजारत को मजीद मुस्तहकम व पायदार बना सकें। सामिन कराम, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम में ख्वातीन को खसूसी तरजीह दी जाती है। मसलन मुल्क के बहुत से बैंकों में उनके लिए सूद में छूट दी जाती है।

दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से वाबस्तगी अख्तियार करने की अहलियत में उम्र 18 से 65 बरस की होनी चाहिए, खातून की हिंदुस्तानी शहरियत होनी चाहिए, कारोबार गैर फॉरम गैर कॉरपोरेट नवयत की ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे टेलरिंग ब्यूटी सैलून फ़ोन रिपेयरिंग और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होने चाहिए। ख्वाहिशमंद कारोबारी खातून की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। उम्मीदवार के कारोबारी सलाहियत लाजमी है। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम से वाबस्ता होने के लिए मतलूबा दस्तावेजात में सामिन कराम, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम से वाबस्ता होने के लिए मतलूबा दस्तावेजात में शनाख्ती कार्ड, पता का सबूत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक अकाउंट तफसीलात, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ज़रूरी हैं। सामिन कराम, दरख्वास्त जमा करने के लिए करीबी बैंक से राबता किया जाए या फिर जनसमर्थ पोर्टल या www.udayamimitra.in वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दरख्वास्त जमा किया जा सकता है। इस मंसूबा के तहत कर्जा की मुद्दत आम तौर से 3 साल से 5 साल तक की है। ये लोन महज कारोबार के लिए फराहम किया जाता है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए कतई नहीं। सामिन कराम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ख़वातीन को कर्जा बगैर किसी जमानत का दिया जाता है। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये बात बिल्कुल आयां हो जाती है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम मुल्क की ख़वातीन को खुद कफील बनाने, उन्हें माशी तरक्की फराहम करने और उनके कारोबार को तरक्की देने के हवाले से नहायत ही कारामद वो सूदमद

सामिन कराम, अभी आप अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में फिल्म दिल के नगमे से महसूस हो रही थी। इस नगमे को कलमबंद किया था सभी ने, जबकि मौसीकी से आरास्ता किया था आनंद।

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमा में उपस्थिति रहेगी।

0: पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है, पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं युष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
2: Namaskar. Aap sabhi ko aaj ke is vishesh mahotsav ki bahut bahut shubhkamnaen. जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट, यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा

0: जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
1: जी।
0: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार का अर्थ क्या है? दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है। अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप, हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है। चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: Mandir mein vishesh pujan archan chal raha hai, mangal dhwaniyan aap tak pahunch rahi hain aakashvani ke madhyam se, aur hum aapko bataye ki Somnath Mandir jo hai wo adamya sahas aur jijivisha ka prateek bhi hai, jaisa ki hum aksar sunte aaye hain. Kai baar videshi aakrantaon ne ise loota toda, lekin har baar jirnodhar hua, punrodhar kiya gaya is mandir ka, kyunki aastha ka प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक

0: नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो हैं वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: Parardhe manah shiva sankalpamastu sumukhascha ekadanta

0: भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा।
2: रूप आकृति की कल्पना की गई है जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy.

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है, और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है।

0: उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
1: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक

0: ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
2: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said on this day, India recalls with pride

0: to the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योति

0: लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वर्ग लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिव जी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जा हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जा अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग

0: से स्थापना तत्व को लेकर चलता है, जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्णमधा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
1: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को, तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतमतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air

0: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Shri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Shri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है एक।

0: પહેલા થયેલા આક્રમણ સામે શૌર્ય દાખવનાર સ્વાભિમાની યોદ્ધાઓને યાદ કરતું સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર, કેદારનાથ ધામ વિકાસ, પાવાગઢમાં 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને અંબાજી કોરિડોર તથા સોમનાથ તાલીમ સંગલ દ્વારા વિરાસત બી વિકાસ બી સાકાર કર્યું છે. અને ફરીથી જ્યારે આજે ગુજરાતમાં આવ્યા છે ત્યારે ફરીથી એમનું સ્વાગત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.
1: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath Corridor, the Shri Ambaji Temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Shri Ram Lala Temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India, and the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp, and also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
2: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय.
1: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव कॉइन. इट इज अ 75 रुपी डिनोमिनेशन कॉइन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल इंडीड. द टू साइड्स कैन बी सीन ऑन दिस वेरी स्पेशल मेमेंटो दैट द ऑनरेबल Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat India rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
2: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
1: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग.
3: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य

धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही
सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं।

11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसका भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो

शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनित कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है, किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है, इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था

0: नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards

0: keeping up our heritage and our culture. And he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998. India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: This is the Sanchita channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on to 97.6 meters, corresponding to 1008 kilohertz.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों

0: श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: do it again, please.
3: Trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin,

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते।

0: का जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही

ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्र

पाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया।

0: जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: Stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
5: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing, also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
6: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
5: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong for a long time only when it stays connected to its roots. He said no power in the world can make India bow down or suppress it. On National Technology Day, Prime Minister said on this day the first 3 nuclear tests were conducted and the country's scientists showcased India's capabilities to the entire world. He said these tests demonstrated to the world just how unwavering the country's political will

0: tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1,000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1,000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया

0: के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह

0: ही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गाँव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चलें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव

0: @irnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারস অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তবলা বাজিয়ে শোনাবেন বিপ্লব ভট্টাচার্য। তাল ঝাপতাল। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেছেন কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

अभिजीत भट्टाचार्य और अलीशा चिनाई के खूबसूरत आवाज में फिल्म खिलाड़ी से यह खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। और आज झरोखा के अंतर्गत तो बातें हो रही हैं गौड़ीय नृत्य के बारे में। डॉक्टर महुआ मुखर्जी ने इस लगभग लुप्त हो चुकी कला को शास्त्रीय मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सुंदर मुद्राएं, जटिल पदचाल और अभिनय का संगम होता है। फिलहाल 5:37 और अगला नगमा एकदम तैयार। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

5:42 और सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज में मिलने से डरता है दिल फिल्म बादल से। और आज झरोखा के अंतर्गत बातें हो रही हैं गौड़ीय नृत्य के बारे में। भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये ICCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। गौड़ीय नृत्य बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक सशक्त माध्यम है। 5:43 फिलहाल वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

5:52 मिनट और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आगे, लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम हिंदी वार्ता। वक्त होगा 6:10, तब तक के लिए आ गया नमस्कार। जाते जाते खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए साथ रहिए।

0: weather report, which will be followed by the program summary and the closing announcement. Well, those were the announcements regarding the program highlights. And now please stand by for the news in Hindi to be relayed.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Mukesh Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier, addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
4: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement the Prime Minister's appeal at the ground level. The Prime Minister had exhorted the people to reduce petrol and diesel consumption by using metros and public transport and opting to carpooling. He had also urged the citizens to help conserve foreign exchange reserves by refraining from unnecessary foreign travel, choosing domestic tourism and celebrations within India, and avoiding non-essential gold purchases for a year. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today said that the state government has decided to transfer land to the Border Security Force within 45 days for erecting a fence along the Bangladesh border. Mr. Adhikari announced the implementation of the center's flagship Ayushman Bharat Health Scheme and several other initiatives of the central government in the state. Besides, the tenures of the nominated members, directors and chairpersons of the non-statutory boards, organizations, bodies and public sector undertakings of the state government of the West Bengal have been terminated today with immediate effect. The decisions were taken in the first cabinet meeting held today after the formation of the new government in the state following the recent assembly polls. Benchmark domestic equity indices fell around 1.5% today as a fresh flare-up in US and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The BSE Sensex plunged 1,313 points to close at 76,015. The NSE Nifty lost 360 points to settle at 23,816. In cricket, India continued to hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग, और आज हिंदी वार्ता के अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। भारत के इतिहास में 11 मई का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकविदों के अटूट साहस और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। इस दिन को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे भारत ने वैश्विक प्रतिबंधों और चुनौतियों के बावजूद खुद को एक परमाणु और तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत 1998 में हुई थी। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इस ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया का 6th परमाणु संपन्न देश बना दिया। खास बात यह थी कि भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला ऐसा देश था जो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं था। इसके ठीक बाद 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधिकारिक तौर पर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया। सिर्फ परमाणु परीक्षण ही नहीं, 11 मई का दिन 2 और भी कारणों से महत्वपूर्ण है। इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह 2 सीटों वाला एक हल्का विमान था जिसे राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसी दिन सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के पीछे

एक गहरे उद्देश्य छिपे हैं। देश के उन गुमनाम नायकों को सम्मानित करना जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी नवाचारों को प्रोत्साहित करना, इसके अलावा युवाओं को प्रेरित करना, नई पीढ़ी के छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करना, इसके अलावा समाज में तकनीकी प्रगति के लाभों और इसके नैतिक उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना। पिछले कुछ दशकों में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, मंगलयान की सफलता, रक्षा के क्षेत्र में अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, तेजस लड़ाकू विमान, डिजिटल क्षेत्र में UPI के माध्यम से डिजिटल क्रांति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का निर्माण। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी के युग में जी रहे हैं। भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। हालांकि हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या हैं? अनुसंधान और विकास पर निवेश बढ़ाना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ बनाना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के महत्व को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं पर भी बात करने की जरूरत होगी। 1998 के उन परमाणु परीक्षणों ने न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बदला बल्कि दुनिया का भारत को देखने का नजरिया भी बदल दिया। पोखरण 2 एक साहसिक रणनीतिक कदम रहा। और इस परीक्षण के बाद दुनिया की महाशक्तियां भारत पर परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रही थीं। और भारत का मानना था कि ये संधियां भेदभावपूर्ण हैं। इन परीक्षणों के बाद भारत पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन भारत अडिग रहा। अंततः दुनिया को भारत की परमाणु शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें गर्व करने का अवसर देता है, लेकिन साथ ही ये एक जिम्मेदारी भी है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का उद्देश्य केवल विनाशकारी हथियार बनाना नहीं बल्कि मानवता का कल्याण करना है। डॉक्टर कलाम के शब्दों में, ज्ञान ही वह शक्ति है जो राष्ट्र को महान बनाती है। हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपनी तकनीकी कौशल का उपयोग एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण के लिए करेंगे। जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
अब से थोड़ी देर में ही आप सुनेंगे संस्कृत

0: में समाचार और उसके बाद 6:30 पर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी कार्यक्रम गुलगुलशन लेकर। तब तक के लिए आ गया नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणासोत्रो भविष्यति। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मंदिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मंदिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय

0: भूहस्तान्तरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मन्त्रिमण्डलगोष्ठ्याम् एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि पञ्चचत्वारिंशत् दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केंद्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रिय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां पञ्चवर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेन उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपलवर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये खूबसूरत सी गजल आपने सुनी। फिलहाल 6:36 और अगला नगमा एकदम तैयार आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन, आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह, और फिल्म का नाम नदिया के पार। फिलहाल 6:43 और अगला नगमा आप सबके लिए एकदम तैयार। सुनते रहिए, साथ रहिए।

6:55 और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा, लौट कर फिर आऊंगी और आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम दर्पण। वक्त होगा 7:30। जाते जाते खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 700

0: 3 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। दर्पण के अंतर्गत एक नजर के अंतर्गत फिलहाल मैं बात करने जा रही हूं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 11 मई को पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवाचार करने वालों की महान उपलब्धियों को समर्पित है। इस दिन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1999 में हुई थी। इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों से जुड़ा है, जिसने भारत को वैश्विक पटल पर एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने उड़ान भरी थी और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीकी आत्मनिर्भरता ही किसी राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा का असली आधार है। आज यह दिन युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में नए शोध करने और डिजिटल इंडिया व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। आसफ अली, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध वकील और प्रखर राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 11 मई को हुआ था और आज उनकी जयंती है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों में से एक थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आसफ अली को विशेष रूप से शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बचाव पक्ष के वकील के रूप में याद किया जाता है, जब उन पर दिल्ली असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अमेरिका में भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया और बाद में ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। उनकी पत्नी अरुणा आसफ अली भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका व्यक्तित्व राष्ट्रवाद और कानूनी विद्वता का एक अद्भुत संगम था। 7:34 एक नजर के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति, और फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। फिलहाल 7:41 और वक्त है साहित्य सरिता का, और आज इसके अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और सांस्कृतिक इतिहासकार थे। उनका साहित्य भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। द्विवेदी जी को हिंदी में ललित निबंधों का प्रवर्तक माना जाता है। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह में अशोक के फूल और कुटज अत्यंत लोकप्रिय हैं। उपन्यासकार के रूप में उन्होंने वाणभट्ट की आत्मकथा जैसी कालजयी रचना दी, जिसमें इतिहास और कल्पना का अनूठा संगम है। एक आलोचक के रूप में उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताकर उन्हें साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। उनकी दृष्टि सदैव मानवतावाद पर केंद्रित रही और उन्होंने सरल तत्संप्रधान किंतु बोधगम्य खड़ी बोली में गंभीर विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित द्विवेदी जी आज भी अपने पांडित्य और उदार दृष्टिकोण के लिए याद किए जाते हैं। 7:42 साहित्य सरिता के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

कुमार शानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से चुरा के दिल मेरा। गीतकार रानी मलिक और संगीतकार अनु मलिक। अगला नगमा बेहद खूबसूरत, सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार और संगीतकार हैं आर्को, लता मंगेशकर और कुमार शानू के खूबसूरत आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना, जिसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं

जतिन ललित। फिलहाल 7:55 और एक खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और इसी के साथ आज के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार

0: अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
0: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: 2014 वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ

0: समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's 3rd consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, Central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
2: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja, followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas, and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ramohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. Meanwhile, the centre today said the stock of fertilisers in the country is more than 51% for the Kharif season 2026. Additional Secretary at the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Aparna Sharma, stated this while addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today.
4: For the season of Kharif 2026, the stock is more than 51%. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 and the imports that have reached our shores is 19.9.

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7116 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094081।

0: विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा
1: जी।
0: तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
1: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरीके से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
0: हुई के महीने में
1: जी आग लगी, और बहुत सारी आग हुई एसी की ब्लास्ट होने के से लगी। उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पर आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पर आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पर आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर्स लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
0: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहाँ पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा अलग घबरा

0: आठवें लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी।
3: राजेंद्र जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है। एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं, तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं, वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है, तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी, वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है, तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है, या एसी आवाज कर रहा है, या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है, तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
2: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे, तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
3: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो कह रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रेस्ट दें, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा, तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
2: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
1: हाँ, नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है, बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो
2: मेंटेनेंस
1: जो है

0: उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट, 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है, और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है, या कोई लॉक कर दिया है, या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो, या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो, और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है, और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए, और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
2: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
3: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस से लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले

0: लगे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिकसिटी की जो बात है मैं कह रहा हूँ, जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, घाट होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
0: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन ले, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: हाँ, नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील शिवहर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए, और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बनके खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है। जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार,
4: मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने

0: ही पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
1: उसमें यह होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहां पे जो जलने वाली चीज है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
0: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: लवली जी नमस्कार।
0: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
0: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
0: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
0: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
3: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
1: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो। और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए, उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
0: RWJ हो या कुछ भी,
1: हाँ कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग आवश्यक मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
0: एक सवाल है पानीपत से, हैं ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
1: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
0: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
4: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
0: जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये MCB LCB ELCB का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
0: तभी जी प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यही समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: संक्षिप्त रिपोर्ट को संबोधित करते हुए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर और चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
6: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण।

0: क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम और अस्थिरता को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बावजूद संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर गतिरोध में फंसे हुए हैं। हाल के दिनों में गोलीबारी, जहाजों और खाड़ी देशों पर हमले और इसराइल तथा लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला के बीच नए सिरे से झड़पें हुई हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर इस महीने की 13 से 15 तारीख तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये घोषणा की। लगभग 9 वर्ष में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली चीन की यात्रा होगी। ये यात्रा ईरान से व्यापार और जारी संघर्ष को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के बीच हो रही है। अफगानिस्तान में बाढ़ से नंगरहार प्रांत में लगभग 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी गई है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। IOM के अनुसार बाढ़ में कई लोगों के घर, खेती की जमीन और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। संगठन ने कहा कि लगमान और कुनार प्रांतों में भी राहत कार्य जारी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हालांकि आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध जारी। अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani. I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources. Terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Iran and United States remain deadlocked over efforts to end their ongoing conflict. In Afghanistan, around 2,000 families affected by recent floods in Nangarhar province. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. Prime Minister Narendra Modi today called upon citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे

में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गैर का साथ है और रोज मुलाकाते हैं, प्यार है उसके लिए और हमसे फकत बातें हैं। अरे

रंगत ये खुले खुले से गेसू तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना तेरी रात का फसाना।